एम कौआ ओलंगो तेनकुछ अवा प्रोग्राम को सब से का के रू के कबै तु खई से पंगे ओलंग से चाहते खमुखे अगुशे कबै तु खई से तेनकुछ अवा ओलंगवा सदैं चिम का के आ प्रोग्राम अली कौ ओलंग के मसीद कौखन को सूपा के ओलंगम तुम कौन आखिर तुम देखा मनी थे मुकोई तो मोल नहीं हो जाता वो कौन देख का वो करें मैं कि सेफ्टी कन्या उलू जी से अगुसी देख सेफ्टी और जिम नोट लगे अगुसी वो आज के इंतन चोंग में बोला कोई सब उसी से का के राडू कोई अली को अब्रुहम उनके तो कोई उंगा बोला नहीं कोई सब उसी से के माउंगा मसो तेरे तो उंगा बोला